चांद प्रभु धन्यवाद। जिंदगी मन को ती काम नहीं को बंदगी एक दो तीन चार पाँच कक्का।